0: हेलो हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सार।
0: गुड मॉर्निंग। कना ओबिर बनो मिंग लाइफ हम हैबी यू
1: खोंमन दगी प्रेमी ने सार।
0: प्रेमी हैबी बगो प्रेमी हुजिक सिबु करी तो बिरम बनो
1: सा थविन थांग गोसन जरा सा गी पोगा जि याव जरम बन।
0: होय होय चाय सिंग उनेद्री को
1: ओ काजद्री सा।
0: होय होय नसी दी नो माइजिंग नो मिचो बनी ने खर थेंग ना या मचाना गदो माले।
1: ओ
0: अदो नसी की तंजासी दा करी करम बैसे खुदो तम जरोगे
1: ตามนะอูริบะชิงยาเกนะตอบดะตาเซอิเซยเซมาเต็มตังงบิระเดอัมนอไนนี่ตามนะอูริบะชิงยาเกนะตอบดะตาเซอิเซยเกฮูปริงตอมตะกะไฮบิวบะตามนะอูริบะชิงยาเกนะตอบดะตามนะอูริบะชิงยาเกนะตอบดะตามนะอูริบะชิงยาเกนะตอบดะอ่าตามนะอูริบะชิงยาเกนะตอบดะอ่าโฮยๆๆๆๆ
0: হুজিক হাইবি বা ইয়াই থাকি থাম্বাল হাইবি বনি গ ফিল্ম মামিং সে। হ্যালো হ্যালো হ্যালো ফিল্ম মামিং দং তক হাইবি ইয়াই
1: থাকি থাম্বাল হাইব সা
0: ফিল্ম মামিং সি গা খান বি রাইবে সে জি গা ওনারম গদব মালি গ আন্দুনা ইনা থি বে
1: চিত্রা পাঙ্গম বম না সক নে সার ইয়া বি দ্রব
0: চিত্রা পাঙ্গম বম গি খঞ্জেল নে বক।
1: ओ ओ
0: एम तरी यिंग जगे ओके
1: लेतर गदि सा म खजर रखि
0: आइ यानी यानी आइ सिते ले जरे आइ खुत ले जरे आइ खुदो तम न बखन जरे के को अदि इसे से सुम खुदो तम जरक पे यार दरा
1: ओ या नि सा
0: हम अदि हम नुआइ जरे ग सिगी थोरम सिदम सरुग्या बिरे पगिदे म खेलि तना थागे चली इसे खुदो तम जरे
1: थैंक यू सा।

0: Mane puri film sai sing matha mathang tabire makhal machal gi thorum kya sanduk tone ta han jai besi akas banim phagi fm sangai channel degini akas banim phal hauzik delhi dagi rileda tabirasi bharat ki kai khum nazariba pradhan mantri sri narendra modi na miyam the piba mahaki puningiwa मन की बात की चाम कुंठा मरी सुबह तांक मिकुखरदंग नहमीन से
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए ये आकाशवाणी है
2: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है बुद्धि तो एक तलवार के समान है जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग सुनिए सूफी संगीत और शब्द कीर्तन
4: कोई बोले राम राम
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल न्यूज ऑन AIR ऐप DTH और YouTube पर भी उपलब्ध

0: टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किट बैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
5: चले
6: ले आ गया नया किट बैग।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: फ्री ट्रिप टू दुबई
10: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूं?
11: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
10: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
11: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
12: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत

0: बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहां से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था भी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा भी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
3: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
0: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने

0: बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
1: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं। एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
0: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूं तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहां अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
0: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर वीर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहां भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहां भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
0: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
1: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
0: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े

तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहां गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलियान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में

कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी बलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे
बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहाँ ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि
जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवंत देखा था, समय के साथ

0: उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाप इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी

0: လိုင်းချင်ငါကနချတ်နဘပရဒန်မန်ထရီနာဟိုင်ဒီမုခမန်ထရီယမ်နမ်ကမ်ချန်နာဟိုင်ဒီကန်လုပ်နတရကဖူရုခုဒင်းမကနာမဆာဂီနတ်ကျော်ဘဆတ်နေဘီအမဒီလိုင်းနင်းလိုက်ရှောလ်နင်းတီနငါကချန်ဒုနသမ္ဘတငိုင်ဖဒေမြန်မာကီရာစတပတိနငါစီပရဒန်မန်ထရီနရန်ဒရမိုဒီကဦးနေဒုနာလိုင်ဘတ်အနီဂီမရီဟေနချေချစ်ဟနဘဝရီရှာနဂနီယမရှုံမြန်မာဒဟိဒတ်မနာစီစနဘဂီအမန်ဘနင်းတီနခငနဘဂီပန်ဒမ်ဒငါစီမာလီမ်ဂီဟိဒတ်မနာစီဂျေနဒဘနုမီကီပလန်ထရုံပန်ထော့ကလီလိုက်ဘကစကီမဖမ်ကယာဒါဟောဇစ်ဆာဘကီဆန်ဟင်ဂလကလီဘာစီကီယင်လကမလီလိုင်နဘဘိဘခ်စင်နပီဘဂိုက်လိုင်းစင်ငါကနချနဘပရဒန်မန်ထရီနရန်ဒရမိုဒီနဟိုင်ဒီဟောဇင်ဟဲကီမမန်ဒါအာကာစဒါနီကီထုံဒစန်ဒိုကီဘမဟာကီမန်ကီဘတ်ထောရမ်ဒရှရီမိုဒီနဟိုင်အရှိကွန်ဘအဆာဘမတမရှိဒါလိုက်ဘကစကီမဖမ်ကယာဒါထက်နရီဘအရင်ဘမဟီစင်အစီဘာရတ်ကီတုံငန်ဘလမ်ဒမ်ကီချနဘီကီဆရုကအမနီမရှိဒါएक भारत श्रेष्ठ भारत की वाकलोन उब फंगी लाइबा कसे की टोंगान टोंगान म मफम सिंग द फंगलीबा हाइनो मखल सिंग के मतांग द पल्लदुना प्रधानमंत्री ना हाई हाइनो की खोंचत असे औजेक्ति खुंगंग दगी मालेम की कैथेल यौख्रे लाइबा कसे की सेल थों की फिबम पगल हन बदशाउ ने थौदांग लौरीबा हाइनो थाबा की थबक तौरीबा मियोय सिंग बशु श्री मोदी ने थागत पफोंग दोखी प्रधानमंत्री ना हाई मियाम की सेवा तौबदा पाक साउन थौरांग तौरुबगी दरकार ओइदे दरकार लैरिबदी सेवा तोंनिंगबगी वाखल अमसुंग होनबा लेपतबा हाइबसिनी आंगांग सिंबु इरोइबा हयन्नबगी तंगाई फदबदु खंगबगा लोइनना स्विमिंग क्लब लिंखतुना आंगांग सिंबु मदुदा इरोइबा तमहलिबा केरलमगी अलुवादा सजीवाला शोरिलगी वारी सु प्रधानमंत्री नम हाकिमन की बात तपनखी
1: साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: भारत मसा सिंह से एस्ट्रोनॉमी के लम्डा मतम चुपड़ा yamne hena punging changi haira duna shri modi na hai navigation bu oiro panji gi thabuk bu oiro natraga aikhoi gi harau kumai singa siga atia amadi thawa mi chak singa chet pamari lainai laiba ka sigi astronomy na hogalakli bana ha singda khanghan ning bagi langtak na ba pokhan baga loina na exploration gi thongna so habli miam na astronomy club singa mari thambi duna suti gi matamda planetarium yeng bachat pina basu pradhan mantri na hai ri लाइबा कसी की खुंगंग अमदी शोहर की माफम कयाना एखोइदे थौना अमदी पौटाक कया पीरी होने बकन बगी वारी अमसुंग माखोइ की थाजेबा अमदी थौना लिंगजेल तना लाइबा कसी बुचा खत बगी लंबी दे संगसिल हल्ली हायदुना प्रधानमंत्री ना एखोइ के अनक पद थेंगनाबा अखांग कनबा अमदी होने बकन बगी थौना लिंगजेल छिंगाजु मसख खंगबी बगा लोइनाना पुंगनिंग थौगत पियु हायरी ایکوی کی اکوی بده لای ریبا توریل پوکری امسون گوها سنگی سنگ لای نریبا تنه تانه با یادر با مری یدو بو نوحو نا نیشنگ بگا لوینا نا پردان منتری نا توریل پوکری امسون گوها نسنگ بگ ایشنگ لو نا نا نیشنگ نا تم نا بشو خای ری مکمنتری یمنام کمسان سنگ نسی لائنگ تاوشنا مهی تیمپل بورد کی لسنگ پوریل اوینا واسک لو کری इंफाल के हान बमानी पुर राइफल्स की कंपाउंड लेबा हयिंग खोंबाल की लाइनिंग थौछना महि लाइसंग द पंगथोक की बवासक लोबगी थौरमदा हमाई बलोशन की छंगलाकपा सलाम मनी न मुख्यमंत्री बु बोर्ड की सना कांगलो नमदि अरोन बंगाक पगी वासक लोखी माफा मतुदा लाइनिंग लाइशोल की ओबे थौरम कया छु पंगथोक की वासक लोर बतुंगदा मुख्यमंत्री न हाय कांगलुप नत्रग फुरुप अमना मसागी नाट की ओबे चनेबी अमदि लाइनिंग लाइशोन निंगथि नंगाक सेंदुन थंबा तंगाई फदे
2: थबक इंग तौबद नीति नियम से यूमदे होबदनी कमिटी के होबदनी नीति चुनाव पुनम थब तौब आवर पाबो फजना बोर्ड मीटिंग फमकान तान फैन फटे कई फजन तानी तौसी थमजगे मालेम की जगह खुद की लेब खुद की ना मांग लाइन लाइसों प्रोटेक्ट तौर मदना चप लेकिन चाखुपी मांग थाब लेबी नाग कल्चर लाइनिंग ममान थान पुनब होना अचौब पाजगे
0: ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯒꯤ ꯑꯦꯐ ꯁꯤ ꯑꯥꯏꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯄꯨꯕ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯅꯤꯇꯤꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯑꯣꯅꯔꯁ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯦꯝ ꯇꯤ ꯑꯣ ꯗꯕ꯭ꯂꯤꯌꯨ ꯑꯦꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯍꯤꯖꯝ ꯔꯟꯖꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯣꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁ ꯑꯦꯟ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯃꯥꯏꯃꯣꯝ ꯑꯅꯤꯜ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯅ ꯍꯩꯀꯠ ꯂꯩꯀꯠ ꯇꯝꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯨꯡꯗ ꯅꯤꯇꯤꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯒꯤ ꯍꯨꯒ꯭ꯂꯤ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯑꯦꯔꯣꯄ꯭ꯂꯦꯟꯅ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯂꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯦꯝ ꯇꯤ ꯑꯣ ꯗꯕ꯭ꯂꯤꯌꯨ ꯑꯦꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯍꯤꯖꯝ ꯔꯟꯖꯤꯠꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯗꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯇꯛꯁꯤꯜꯂꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ
1: ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯝꯑꯣꯏꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯥꯈꯠꯆꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯁꯔꯁ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯆꯠꯄꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯊꯣꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯆꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯖꯕꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯣꯃꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯛ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯃ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯟ ꯑꯃ ꯊꯝꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ
0: ꯃꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯁ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯆꯤꯚꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯦꯂꯤꯁꯤꯇꯦꯁꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯆꯂꯧꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯤꯙꯥꯟ ꯁꯚꯥ ꯁꯗꯁ꯭ꯌ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟ ꯇꯥꯕꯝ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯏꯅꯥꯠꯀꯤ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯀꯪꯂꯩ ꯃꯨꯛꯅꯥ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡꯅꯕ 2026ꯀꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯊꯨꯝ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯀꯃꯜ ꯏꯟꯗꯣꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡꯅꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯁꯦꯃꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯦꯠꯁꯁꯤꯡꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯃꯄꯥꯜ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯦꯁ ꯖꯣꯏꯁꯪꯀꯔꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯎ ꯃꯤꯟ ꯑꯣꯡ ꯂꯥꯌꯦꯡꯒ ꯉꯔꯥꯡ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯩꯇꯤꯍꯥꯁꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯁꯚ꯭ꯌꯇꯥꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯦꯠꯁꯤꯜꯍꯟꯅꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ ꯀꯨꯝꯁꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯤꯝꯗꯤ ꯑꯟꯃꯥꯛꯁꯀꯤꯡ ꯗ ꯑꯥꯐꯤꯜ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔꯤꯡ ꯅꯤꯀꯣꯇꯤꯟ ꯑꯦꯟ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯄꯨꯅ꯭ꯌ ꯁꯂꯤꯂꯥ ꯁ꯭ꯔꯤꯕꯥꯁꯇꯞꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄꯥꯏꯂꯣꯠ ꯚꯔꯖꯟ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯍꯟꯗꯕꯅꯤ ꯃꯦꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯝꯗꯝ ꯎꯔꯤꯁ꯭ꯌꯥ ꯀꯔꯅꯥꯇꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯙ꯭ꯌ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇ ꯍꯌꯦꯡ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯒꯅꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯕꯤꯚꯥꯒꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯕ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯦꯠꯁꯤꯜꯍꯟꯅꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ

शुक्रिया अजीत कौनसम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ और मस्त होंगे और सुनते हैं आज का गीतमाला कार्यक्रम आपकी रेडियो दोस्त थोकचोंग गीता के संग। दोस्तों आज है रविवार और आज के दिन हम आपको सुनवाते हैं संगीत धमाका, तो हो जाइए तैयार हमारे संग संगीत धमाका के गीत सुनने के लिए। तो दोस्तों संगीत एक ऐसी भाषा है जो शब्दों के बिना भी भावनाओं को जोड़ती है और लोगों को एकजुट करती है। भले ही हम किसी गीत के बोलों को ना समझें, संगीत का ताल और धुन हमें अपनी लय में बांधता है और नाचने के लिए प्रेरित करता है, गुनगुनाने के लिए मजबूर करता है। ऐसा ही ये गीत जो आप या हर कोई जब इस गीत को सुनते हैं अपने आप झूमने लगते हैं। तो सुनते हैं संगीत धमाका का पहला गीत संजू राठौर की आवाज़ में। गीतकार संजू राठौर, संगीत दिया है जी परख ने। तो सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों अब सुनते हैं अगला धमाका, जो बहुत ही लोकप्रिय रिमिक्स म्यूजिक वीडियो एल्बम है जो मॉडल और अभिनेत्री शेफाली जिरीवाल ने अभिनय किया है, जिसने उन्हें कांटा लगा गर्ल के रूप में रातों रात स्टार बना दिया था। इस गाने ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था और ये उस समय के युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ था। तो सुनते हैं ये गीत डीजी डॉल रिमिक्स से। शश्वत की आवाज़ में गीतकार है भूषण दुआ।

दोस्तों अब सुनते हैं ओ लैला एल्बम से स्टूडियो नेशन की आवाज़ में ये गीत। इस गीत में अभिनेता शाइनी आहूजा नज़र आए हैं, तो सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों अभी आपने सुना बादशाह और पायल के युगल आवाज में गेंदा फूल का ये गीत। गीतकार संगीतकार थे बादशाह। अब सुनते हैं अगला रिमिक्स गाना जो 2004 में रिलीज हुई थी, जिसे अभिनय किया है राखी सावंत ने। तो सुनते हैं ये गीत। सुखबीर की आवाज़ में सुनते हैं ये इश्क तेरा एल्बम गीत।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना सुखबीर सिंह की आवाज़ में इश्क तेरा तड़पावे से ये गीत। गीतकार थे कुमार। अब सुनते हैं परदेसिया सच है ये पिया, जो रिमिक्स गाना है, राखी सावंत ने इसे अभिनय किया है। तो सुनते हैं ये गीत।
1: Yo, listen out there!

दोस्तों आप सुन रहे हैं संगीत धमाका आकाशवाणी फालकेंद्र के FM संगाई चैनल पर। कार्यक्रम के अगला धमाका जो है वो है जसबीर सिंह की आवाज़ में एल्बम जस्ट जस्सी कोका तेरा कोका। संगीत दिया है देवेंद्र ने, तो सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, अभी आपने सुना कोका तेरा कुछ कुछ जसबीर की आवाज़ में। इसी के साथ आज का संगीत धमाका अब यहीं समाप्त होता है। दोपहर 2:30 बजे फिर आपसे कंगला चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक अपनी रेडियो दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

मखल मचिल की थरम के आसन रोकतुना तहजरी बसी आकाशवाणी इम्फा की एफ एम संगाई चैनल दगनी नुमाइरब थरम सिंह अदोंगी दमक संदोकचरी लेफ्टनेंट ताव्यू हौजिक अमुक संदोकचरी अंगांगी थरम

0: empanada ka mai hang ga lai no
1: adu bro ite ma a sai se khuita mo se sayam na na sakhi ba adu dai suma gi matung de inara ga sum kai nom te di yeng hor ge na sara inara pani
0: nang di ke do be inara iba
1: ai shi ne ba ite mo ma sak pa sa bro yeng ge na
0: pazaram de na tro
1: kana hai nu ite ma pazar de mi akuita mo no pra ngauri ni kai no
0: adu phare ne ai se noi de yam la han nga ga di noi ka ka do अदुदे यानाबा खरकन नंगांग नवो
1: हम तले हये खुइदो लागो लुनो सुतो सुतो बिरोय दोंगा
0: गदो बै लुनो तोरोय दोइनो इनाउदि इतै मन लुनो तव बदनतना सेनिंग बद सेलंग दोरि बने
1: खुनो मिनो गा मसे सिन मय लैनो थासे दिरिसे
0: के बजिगिदा
1: इतुना
0: कैनो
1: आइ गई
0: मा
1: खु आइ कनम काउरे
0: कै काउरगे
1: तू सो
0: हैना अदुके दोरगे
1: अखुइम गि थोंग दोइनो सोलोन जलमनेबा
0: आ
1: एखुइता मोसो लमनी कासो लमनी युम थोंग सोलोन जलमे आइदना ए जोइदो नंतारे आइ चलेगे तेमा
0: आइ
1: चलेगे तेमा
0: आ
1: अदुइ तेमा
0: कै दोरगे
1: अखुइ दलाक फकाउनी को आइ पैसा थोंजन होरमने
0: ए कै गि पैसा
1: नानो पतिक पलेइ नोइ तेमा तेमा आइ चलेगे तेमा आइ चलेगे तेमा आइ चलेगे तेमा
0: अखुइ दलाक
1: फकाउनी को
0: माना हायराम बदुबु रोंमै नमिं रोंबेना सावबिय आ रोंमेन हायना रोंमै काका दयानाब खरे कन्नांगांग नोको
1: कैनो आइ रियासि मोह लाग्रे बजु लाग्छ कैनो पुमिता सलेना कैदो वियोरसा चोंग से बर्बाद आ रहे
0: हैं। इमारत देते हैं बंदा हज़ास। इमा, आयु पोविगन बाबू, आयु पोविगन, आयु पोविगन को बाबू, आयु ने कोई आमर की जेब बाबू। आयु जाते थे बाबू, इतानों दिगे मुंदने पोविकीगन को बाबू। आयु जाते थे बाबू मुंदने पोविकीगन।
2: मतम कुदिन, मिकुप कुदिन, मिहालाना दोंगा शिशु इमिता ममारी बता रही मंदिर पोखी बदो अरुगुंबा हिंसा ये तम बदो शाम देने ते लिसिंग लिसिंग दे लिसिंग लिसिंग
1: बाबा बो
2: पमसा येंगु मांग लेप लीबी मशम्मनाई पापा अमन मशरे इशिर तूना पिजे पिगाई शाब लाई दिए मुकु मतानुं बच्ची न कोलगा अमुक अमुक लोग तोड़ी भाग से शून्य भाग पुमाले मसीदा गाँव भी हुई ना अगाँव भी हुई ना कक्ता रखलम लोई रहे न पावच्चा
0: इचा साला ममने बाबू तले न खुद की बाबा लुपा मगा कक्ता पियो बाबा
2: लुपी मसीदा
0: इमसा गरांग देगी साग मरुम ते साग त्री कोंग सिज़ कोंग गाँव बने थांग बगम तले नगी पिसाई लो रोए न खुद की बाबा को गाँव बने सी के दौरे लुपा मंगा करते पियो बाबा
2: लुपी पैसा
0: बाबा की पैसा दो ऐसा तो थे बेगी बाबा हालक लगा सोई दिन सिंह भी गया बा
2: करी आई बा
0: न कोई खंग दो ऐसा तो थे बेगी बाबा दो थना गया चौबा बाबू ने बाबू
2: ये शो फिशा ने आई बा
1: लुपी पैसा
0: कोई देता माने यमना लगता बा लाग ले रो अलग ले रो माने निपत्त में हाथ पदराएगी पुरे में बसो आई माँ मगत दे नौ महीने काम तो ना हाथ की बने
1: करिया मैं भी बचा
0: निपत्त दे नहीं पुरे में बसो नौ महीने काम तो ना हाथ की बने
2: कपूर भी बचा कुमिंते न कपूर भी बचा ना कि निगम दबगी तेर था इसे ये दुना मैं अब की पुंछी ममल कयानो है बदो खंगलू मिसाइया मिसाइ था दुना तेर था ना वो यूने नुबी मच्छा इंचा ये तो मशीन ना दुगे मना कोंगा दो ये खट्टे बते था ना वो इसे इसा उने नुबी मच्छा
0: इमारत ते ते बा जैसे मुझे पैसा तो सुन पी पी दे ऐसु का ना कोई सुका तो तो तो तो अब वो मिशन ना कोई बुक रगा अंगाव बंगाव बिंगा तेरे सोए दर है ना कहने
2: नुबी मच्छा
0: इमारत ते ते बा जैसे लो इमारत ये राम खुरांग बकुंग ना ना बा तो आ ममा की पुखी सो बसे असली किसी कुजोक थान न थान न था उसे ससिला
1: मैं भी शासन ले रहा
2: हूँ बीमा आई बीमा सा नहीं को
0: बाबा
2: से नंगी पैसा है बेटो
0: बाबा
2: से

0: 论呐，哎呀，还不话克论者，可当他都比了个，哎，可以话一把，还不保持的，可当拉很呢。嘛些慢慢的就买啊，本那不来，啊都哎那出本这里，啊那哎呀，一把话分嘛，还不是的，可当他都比了个，可以话一把话分是拉干的，哎，可以困难的来了，咪吧，嘛真买啊，唔是，嘛是要得个的困难，是行不个没过，还不是嘛是可以呢，可当忙他呢，可能呢，什么呢，可以后来一把米论性呢，困难论机，嘛是嘛是，买啊，唔是。会坑呢来帮您吧来帮给他们他们都没那么来他们那么来他们吧也可以行他们吧舒服那么不那么的就苦奶给他们的书里边你弄里边你哎一下子苦奶的泪里边你苦奶乱子该的那么好那么在一头你过还不在但是他们一些呢肯定那么嘛生意嘛他们就到可以苦奶一下阿婆苦奶嘛为了跟你还呢哎他们这个
1: 양파서보와품뉴사마니푸르하이시디동아동아부룹강룩갸나수쿤다보이바니나마시데이스다아이기하이브나타바에코이카마이니힝민나가니에코이기아픈바하이브두나망탄나장실라가디헤나자컷바쿠나이아마스오이니하이브두니아도가양파서보와칼론도자나아모럴사이언스가나타미시오사시데이스다에코이기이람담시가레하우시가추세나바마옹다딱비담비데나타우라가디쿠나이론시부힝가한방엄바기마차아모오이기니하이브와품두니요자양나모노아이지오자가시에코이기나루ये कंजियल के थोरम स्टेलिंग बिरक्तना यामना काउना क्रब हिरम हाइबतारे ओसा अदुगा याउदबदि यात्रावा खै लुतोंग द सागोना क्रब सिंग मखुनाइलोन हाइबसि मतांग द नसिगि नहासिं द निंगसिंग बिरम बोजाबो मुखाना हाइनिगालि तना थागचरि
0: कुरुमसेरि
1: हौजिक ताबिख्रे खुनाइलोन अमदि नहारोल सिंग हाइरिब हिरमसिदा मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर गी डिपार्टमेंट ऑफ उमंगलाई हराउबदा गेस्ट फैकल्टी ओइन लेबिरिबा मुतुम मणितोनगा उनदुना वारी शानजबा उनजेखिबी गायत्री सरांगथेम नसिगी ओइनदि नहारोल गी खोंजेल मतांग स्टलोशिन जरी थौरम ताबिरम निबा पुमनमकपु अमुकहना खुरुम जरी नहारोल गी खोंजेल थौरम ताबिरे Agaswani Imphal Haujik Mathangi Thauram Kangla Channel Dagi Rile Lawduna Taminasi
2: Di Khunggangi Thauram

0: မဏိပူရအိန္ဒိယကြီးဆာဗီယမ်တို့ကန်မဏိပူရှိခွေကတော့နေဘတာပါကိုဇာဆဲအဲဟိုကွာစီနုံမဒကေဇာဇာဒါဇာဆဲအဲနုံငါလပကဘရစီတောက်ဒီငိဒါတလပ်နေဘတ်တက်နေသာဇလိစီတလပ်မနာစီတလပ်စီအခွေနအစင်ကြီးဂလာစမဒါအခွေနယူပီစီသမ္မာအလုကတလပ်စီပရဟိုင်ဇလတော့ကန်ယူပီစီကိုလက်တော်မယ်မိုင်းကရီအက်ရှင်စီအားနစသည်ရစုံရင်မကအဲစီတလပ်စီကရင်ဒါစဆန်ဒပိဒါကေဒါရမနတလပ်စီတာကင်ဇာဇလနီစာရမနကမစ်ရီဝရေလေဘာကိစူရေနာတနာऑफिस ते कारो हजिंग अखै जकान ते क्वा मैसी ए कजिन कजिन सिंग जे खकी क्वा कोही नाक तने तो दुजी क्वा चाबा आदि तलब ससन वा आदि स्वरूप थकबा सुम मयाम जने कै जौ रे कान दा खकी नरक पकान जा सिम इफा जे निम ससर केरा नत्र ग खै रिम जे सके रा सिम सर्वे तो मतम दा नुपी और नुपा होय गेला ऑपरेशन सि याम तो नुंग याम ले मणिपुर सि स्टोन केस हाय दा रे ने को स्टोन केस सि याम ले स्टोन केस ले से सुम ये गन तलब जा कि लो सुरो जो खै सि हाय मई पियो हाय दे तलब ने आनो अलै रो युंगे खै कि छत तौ रो सु छत हाय रो जो मिस्त्री मगाइ तो गाइ चा थौ आ देखि मा हाउ बा मसी होय बा जिंजा छ हाय तलब का आनो आगे स्वरूप का आनो ठीक से तो गांदा नरक मकान दिमाना नो मंगिल बा सांगा सांगा लिसिंग लिसिंग तलब मगे थाम दिल बा लिसिंग तरा हुआ कुन दाले बे पोत से माना जिगे ठीक तबाको प्रोडक्ट सीजन दम मा ऑपरेशन तक तौ रानी नर अनी कैंसर ना बियाव रे नुंग लै बियाव रे अदेकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लै बियाव रे अदेकी मागी मैम लै बियाव रे मा सी नरा पकाना दे इंताम ब्लॉक्स ने मा पैसा संगी सी अदे सी संग पकाना दे मागी फैमिली दा स्पाइरल इफेक्ट ने वाला मा नरा अमीना मसाला रिक्तम बदुमा फी थी बंग मारो अफाव स्कूल लै तम बंग मारो अरे की सुम सुम दे मागी खई की पॉवर्टी साइकिल से दा चलन नंगाई की असौबा मरम मम ओइ रे बा खई की सी की तबाव को प्रोडक्शन आदे की अंगांग मजा जु कंसंट्रेशन फोकस तो बंग मारो स्कूल चला नी चुरुप था नी अरे मान है कई मथा सर ब मतम दाई चुरुप था गे नदर परखा जु मामा न बा म का खन रयो नदर मान पा म पोन म फंग द्रो नदर ग एक सुम म्यू बेस देखो की सुम ब मतम मा चुरुप था गानी खाई नी जरा नी जरा जरा न मा फोकस तो बंग मसीना अखई की ओवरऑल एस्पेक्ट ता मांग जब ने हेले मंगो न तुंग म दगी दी मांग जब न 99% हेले बा सी हेले ब पोत म कैसे के जौरिया कोई ने याम न फजन अवेयरनेस कैंपेन तो वम संगी ममा बाम खै ज्ञान दा हजुक ती अगो अखै बा निबो न मैक्सिमम तबाको पर सिजन न जसे पाक पुले छ लग्दै छ गन्द मी मरी जे थिबु गन्द अहुम दिन सिजन न रे बा आइ दि मी मरी जे का खै लेफ गन्द अहुम सि दि कपल छरी होइ न मासी खाइ नि जाव र जुरुप थक पर क्वा साव र कैनोम दि तौ रे बा र सी तौ र मिना खै के जाव रे आइ आइ न जुरुप थक आइ गि जा द जुरुप थक न हाइ बे सब मान न फ्यु म लाय बे खै कि त्रेन जे दा अन सी सि खै पुलम न ज्ञान त मिनर का भाव त मिनर का अखै कि तबाको सीजन न दबदगी दि सीजन बना हे ना मांग जे हे बे खंग मिना सीजन न दबा दुगल इनखा लै बा अंगांग म खै सिंग से अखै न सीदगी अखै न कल लगा अखै कि प्रोडक्टिव होय बा याम न हेल्दी होय बा अखै कि पॉपुलेशन अमा ओइ नंगाई कन न होन मिन न बे कि दरकार लै न इ दिखन जे
1: tamu makhatana lakchaningni ba wafam se maroi ne akhoi gi inkhalakli bana ha sing drug addict leira ba mayam sida kharak kan badanga thokna ba kari kari hona ba yai habdu su khaji tang thambi
0: akhoi gi drug addict si yam na serious hoi ba isu saman ni drug addict se koi maroi na koi manipur da akhoi gi international boundary ga akhoi gi naibing hoi bani na aje har ba barma gi si koi gi golden triangle le si world famous hoi ba koi gi drug ki yam na phang ma phang ga nak nam ni na koi gi drug कि अबे याम न मारंग काइन न फंग मसि दियाम ओइ सि गिसे याम न इ मारंग काइन न फंग म पोट ओइ अन द्रग की इशू सि सुम नै न बगांदा माइ सि ओइ न मुथत लगे हाय बगांदा सि फाइट ओगे गांदा एस्पेक्ट अनि नि लै दिसे अमन न खै कि सप्लाई साइड सि रिडक्शन त होन म सप्लाई गि हाय दारे अमन डिमांड साइड सि रिडक्शन त हो अलुग सप्लाई साइड रिडक्शन त हो सिदि अखै कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी साइब दारे जे पुलिस कुम्बा नाफ कुम्बा लै दिन एनसीबी कुम्बा सि कि सिक्युरिटी एजेंसीस म खै कि मथौ ने सि सिना अब डिमांड रिडक्शन त होन म सिदि अखै कि सिविल सोसाइटीस म खै कि कोई पब्लिक की डिपार्टमेंट के सिविलियंस म खै कि अखै कि मथौ ने आइब दारे अन डिमांड रिडक्शन सि त उकान खै दे कि मरो जे कि अवेयरनेस याम न खै कि लार्ज स्केल ल याम न रिगरस होइबा याम न इंटेंसिव होइबा अखै न अवेयरनेस प्रोग्राम म मूवमेंट म अखै न तौबा जंक्शन म दरकार ल सि कि सो अखै सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट न छु अखै कि तौन न अखै प्लान ब्लूप्रिंट कन अखै सेमी अथु ब मतम न अखै न सि कि सो म तौ रा न अवेयरनेस डिमांड रिडक्शन अवेयरनेस अखै न इनिशिएशन से ड्रग्स से तौबा कन अखै न हम आइडेंटिफाई तौबा म चंगि से अखै न सीजन नरी सी करम सहीद की हान हौगे जे इनिशिएशन इयर्स से नमले ये माई द सही क्लास 4 दिस इन पूरा 5 दिस इन बहु बड़ा कमन नोइन है बता रहे ने का मा सी 6 तक हान ब फर्स्ट टाइम यूजर है बता रहे ने सी इनिशिएशन इयर्स सी करी नो आइ जखिन खंगदो पम जेंगे का डिफरेंट स्टडीज तो रिसर्च तो मैम लाइज जी माई माई के डिफरेंट ओपिनियंस में हम का माई की फाइंडिंग्स है बता रहे अरे सी की इनि

ताखेल मयूम सुनीति बला देवी सकप मणिपुरी मतम इसई मथंग मथंग संदोकनी पू मापल मिनट निफू मंग पुंग तर मैम पोस्ट कार्ड की खुतांग खनबीरखीब ताबीनिंग मणिपुरी फिल्म इसई सदोकन ताहनजगनी।

0: बद्दू, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: कंगलई पार्क मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट की एडमिशन हो जरे थमजरी बकोर्सिंग दी BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, B-Pharm, D-Pharm अमरी पैरामेडिकल कोर्सिंग ने लोन की खुदों चाबचु पीजरी लोइना ना मेडिकल डायरेक्टोरेट ने सिंबा कमन एंट्रेंस एग्जाम की निमित कुन्नी की ओइबा प्री क्रास कोर्स फंगन जगने अकुप मरोल की दमक www.kanglaipakmedical.in चंगबियो नत्रगा कंगलई पार्क मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट
4: हौजिक नुमिदांग इपुंग तरेट मखाई तारे मणिपुरीदा पाउ ताबिरसे
5: आकाशवाणी इम्फाल ओहेंगबम राजेश ने पाउ पाजरी आहानबदा मरुवेबा पाउ मुख्यमंत्री युमनांग खेमचान ना हाई खुनाई अमुबु चौखपगी लंबी पुरक्नब होनबद नाथ अमदी धर्म की चटनबी गाक सेंदुन थंब यामनम तंगाइफदे कांगपोपी जिला की कौनसा खुल खुलाई पाइबसिंग नोमई कापसीद मोई सोले महरों खुनाई हौजिथोली वाथोक निथीज खब की तंगाइफदब मुख्यमंत्री युमनांग खेमचान सिंह मियामद हिदाक मना सिजनबगी अमांगब निंथीना खंगनबगी पांदमदंगसी मालेमगी हिदाक मना सिजनदब नुमिकी पालन थौरम पांगथोकली अमसुंग साबगी चांग हेंगलरिब असिद मियामन यारिब मखै सेक्सिन लैनब अमदि सरकारगी चन कानून सिंगाक न चपिनब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीना अपील तौरी मुख्यमंत्री युमनांग खेमचान सिंह खुनाई अमुबु चौखटपगी लंबी पुरक्नब होनबद नाथ अमदी धर्म की चटनबी गाक सेंदुन थमनब यामनम तंगाइफदे इम्फाल की हयिंग खोंबाल लाइनिंगथौ सनामही संगलेंद लाइनिंगथौ सनामही टेंपल बोर्ड की प्रेसिडेंट ओइना वासक लौरब तुंग श्री खेमचान राइज्य से नाथ की चटनबी अमदि संस्कृति योखटनब होनबद माइकैदिगी पांगब याब मतेंग पांगनी हाइबगी थाजब पीखे
6: नीति नियम से यूमदगी होबदोबनी कमिटी होबदोबनी नीति चुनाव पुनम तौहीब अवर पाबो फजना बोर्ड मीटिंग फमकान तान फै फे कई फजन तानी तौसी सिमजगे मालेम की जगह खुद की लेब खुद की नाग लाइम लाइसों प्रोटेक्ट तौरगा चप लेबी चाखुपी मांग थाब लेबी नाग कल्चर लाइनिंग ममान थाना पुनब होनबद अचौब मतें पाजगे
5: श्री खेमचान है करीगुम थबक पाइखपद नीति नियम निथीना चप ताई लाइसंग अदुगी अकोयबगी फिवम निंथीना थमनबा पाइकपदा थौरांगसिंग बोर्ड की मिफमद खनगनी राइजसे सान्दि हंजिलंगनबसु महांगना ईशोरगी मफमद थौनिजकी मुख्यमंत्री बो तोंगान तोंगान मकाउंट की मियोयसिंगनासु नाटकीब फिजोलसिंग लोइनना तरामनो ओकी श्री खेमचाना सनामही संगलेन मनाकता उचरासु थाकी मधुगी ममांगद मुख्यमंत्रीना मफम अदुदे हेक थुंगलबद लाइनथौ सनामही टेंपल बोर्ड अमाइब अमाइबिसिंग अमदि अतै मियोय क्याना महाकु तरामनो ओकी कांगपोपी जिला की कौनसा खुल खुलाई पाइब सिंह नोम कापसीद मोई सोले अशोक मोय अद इम्फाल की रिम्स हॉस्पिटल पोखलतना लाइकनरी थोदी अहमद इसिंग पाइप सेमजन चलने नगा पीपल्स फ्रंट NPF मणिपुर स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट MLA अवांगब न्यूमाय खुंजासी नोम कापसीप की थोब कब फोंदी चेरोल मिचमद खुलाई पाइब चथरब थों कईदनोंब थों जाति कानूनी मरक्त तोखा तानब की फिवम लाकनी मांगना मिचम मैम से मतम चुपद सेंदुन थंब है यामनम तंगाइफदे मरमदनाई हिंसा थादोतुना हिंगमीनब शांति वारी सानबरोम चंसिनब होनगदबने ngasi ayu konsakul naga village ki miyoi ahum da nomai kapsil apagi thong adabu konsakul konsaram village authority na kanna yaning daba phongdrok dei cherola madalu basin hai konsakul gi kunja sing ngak senaba hona bada mipung khudimangna mateng pangbiu Mukhyamantri Yumnam Khemchan Singh ngasi kuntaruk suba meritorious award entopi tharum da charuk yaki ngakraba lairak development association asinduna singjamai singa mathak ngakraba mandap ta pangthoki ba tharum aduda tongan tongan ba lam singda makok mathang taraba singda mana mathum sing entokhi bani tharum da mukhyamantri na mana phanglaba sing bu thagat paga loinana tungi punsi da ju mithoi mihena ba honana ba haiki Mangnai, Larik Lai Sugi Lamda Haitoi Sing Toreba Sing, Mateng Pangba, Amasung Makoi Busengar Pai Basi, Sarkar Asigi Achet Papirepni. Malem Gi Hong Lodi Basigi Matang the Wapongkea Pongdorodana, Mukemantri Nai, Mairoi Singa Larik Lai Sudi Hena Pungling Chang Bakak Natana, Skill Development Gitorum Singasu, Mapung Paba, Saruk Yaba Hai Basi, Yam Namak Tangai Fade. Mangnai, Mairoi Singa Kunai, Asida Hauzik Tori Batodo, Watok Sing, Ning Tijana Kangbagi Tangai for the Belay. Miam the Lambi Tingzinduna, Amasung, Bando Duna Kongzang Changchin Bagi Mahuta, Lamdam Sigi over Watok Sing, Wari Sanadana Loisinaba, Mukimantrina, Apil Toki. Meritorious students Amasung Achiever Singh Butaram the Opogi Toroma Mangasi Imphal East Zilagi Chalok the Labour Irabot Memorial Hall the Pang Tokre, Toromadu Bidan Sabasadasa, Kongban Tabam Ibom Chasu, Saru Yaki. Sagolban Constituency Progressive Committee ne senduna Sagolban Constituency Meritorious Award ngasi Sagolban Thingom Lekai Community Hall da pangtokre Thawal jila gi manung chanba kairem bikok khungangi oina mai paklakraba mahiro sing opage thorom ngasi kairem bikok mayai lekai community hall da pangtokre tabiriba pawasi Akashvani Imphal degini Miam the Hidang Mana season begi among but Ningtina Kanganabagi Pandamda Nasi Malemgi Hidang Mana Sinadaban Numiki Palantorum Pangtokli. Kumsi Chahiki Palantorum Asigi Hiram the Unmasking the Apple Countering Nicotine and Tobacco Addiction Hibasini. Malemgi Hidang Mana Sinadaban Numina Lakpada Mukhyamantri Yumnam Khemchanna Miam the Hidang Mana Polam Singh Sinadanaba Apple Tori. Mangnai hidang managi polam sing asi miangi haksiela chawna singna batanatana masina tongan tongan ba laina sing thon batanatana miobigi punsibu tensil lali numit asiga mari denan piba pauzil da mangna hai manipur hidang mana sina da lamdam ama oinaba punna hona minaduna masama u phaba asoengam thoktaba amadi chakot pa lamdam ama oinaba hona minarasi Numerasi Rajasi Tongan Tonga Mamapam Singh Dasu Pang Tok Naki Sandel Jila da District Tobacco Control Cell District Health Society Sandel Ga Punna Kusamaduna Jila Thaki Oiba Malem Gi Hidak Mana Sina Daban Numit Jila Asigi Salem Third Leba Little Angels Paradise School Da Pang Tokki Central Bureau of Communication CBC Field Office Sandel Na Sinduna Numit Asiga Mari Renna Akhanaba Outreach Program Ama Jila Asigi Purum Tampak Village Da Pang Tokki CBC Regional Office Imphal Sinduna Numit Asiga Mari Renana Akhanaba Outreach Program Ama Imphal Iski Paura Bidaleba JM Public School Da Pang Tokki. Coalition Against Drugs and Alcohol Kadana Sinduna Imphal Iski Konung Mamangdaleba Masigi Office Da Numit Palanasi Pang Tokki. Assam Rifles Sinduna Chandel Jilagi Salon Kaubang Amasung Chakpi Karong Da Ngasi Malengi Hidak Mana Sindaba Thoram Pang Tokki Thoramadra Kunja Chanirom Saruk Yaki. Environmental sustainability and traditional knowledge system in Northeast India practices, challenges, prospect. Haibasigi matangda numin umni chatharapa jati thaki seminar ngasi Imphal East leba Khonang Thaba University da Loisen Grey. University asigi eco chapter amasung science club na Directorate of Environment and Climate Change kusan raga chatharapa

0: August Vani Imphal, Haujik Ekoi Studio Gi Gharida, Nubidangi Pung Tara Makai Tare, Tauram Loi Sunjana Bapung Jadu Yorokle, Haying Jun Gitarik Ama, Inga Gitara Taruk Nipanba, Ning Taukaba Numit Asigi, Ayuki Pung Manga Makai Tava Matamda, Sangai Channel Gitaram Sandok Pahojagani, Matamadu Fau Bugidi, Tabi Ribus Singhagi, Kainiatang Nijeri, Pinavirasi, Jai Hind.
1: की प्रेम की मोहब्बत की इश्क की जी हाँ बहुत ही सुहाना होने वाला है ये हमारा सफर. और जब हम बात करते हैं प्यार की और प्रेम की तो हमेशा ना मतलब प्यार प्यार से बात करना और ऐसे ही हंसते रहना अच्छा तो लगता है, पर जब कोई रूठता है और कोई मनाता है, जब थोड़ा सा दर्द होता है और उस दर्द में अपने प्रिय की याद आती है तो प्यार और भी अच्छा लगता है और मजा आता है. तो प्यार में दर्द भी होना चाहिए पर हाँ थोड़ा सा. तो इसी विषय पर हम अभी एक गीत सुनेंगे जो है आशा ताई की आवाज में और फिल्म है हमसाया.

नहीं नहीं हम आपको दर्द नहीं देंगे, आप तो हमारे प्रिय हैं, आपको कैसे दर्द देंगे, आपको तो हम अच्छा अच्छा गाना सुनाएंगे। और अगला जो गीत है वो ये बताता है कि प्यार को ना बस प्यार ही रहने देना चाहिए। कभी उसका अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें, ये जानने की कोशिश करें, बाल की खाल निकालें तो अच्छा नहीं लगता। प्यार को सिर्फ प्यार रहने दो, उसका एक अलग मजा है। और आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सा गाने चलाने वाली हूं आपके लिए। चलिए सुनते हैं खामोशी फिल्म से लता जी की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

देखा मैंने कहा था ना प्यार को प्यार रहने दो, इसमें ज्यादा मजा है और ये गीत भी उसी तरीके से मजेदार था। अगला गीत जो हम सुनाने जा रहे हैं उसमें हीरो हीरोइन से कहता है कि भाई अभी मेरा मन नहीं भरा, रुक जाओ।

नहीं नहीं इतनी जल्दी हम आपको कैसे जाने देंगे, अभी तो मुलाकात हुई है, अभी कैसे जाने देंगे। हाँ जब हम प्यार में होते हैं ना, या किसी को पसंद करते हैं, तो उनकी हर छोटी चीज हमें अच्छी लगती है। वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह के गीत सुनते हैं, उनका झुमका, उनकी बालियां, उनकी शर्ट, उनकी पैंट, वो कैसे शूज पहनते हैं, है ना। हम छोटी छोटी बातों पे

ध्यान देने लग जाते हैं, क्योंकि उसी से तो प्यार बढ़ता है, छोटी चीजों से। चलिए अगला गीत सुनते हैं, लता जी और मोहम्मद रफी की आवाज में, और फिल्म है अभिमान।

उम्मीद है कि आप भी ये सब गाने सुनकर छम छम करके नाच रहे होंगे. आप ना सही, आपका मन तो नाच रहा होगा. खैर, जब प्यार में होते हैं तो मन तो बहुत कुछ कहता है. कभी पिया, कभी प्रिय, बस पुकारता ही रहता है उन्हें, जैसे अगले गीत में पुकारा जा रहा है. अगला गीत पेश है लता जी की आवाज में और फिल्म है कुदरत.

श्रोताओं, इसी गीत के साथ हम खत्म करते हैं अपना कार्यक्रम हर सिंगार. और आप हमारे साथ जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. कुछ ही देर में पेश करेंगे हम समाचार, और समाचार के बाद मैं आपके लिए लाऊंगी कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत. तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की।

0: ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Man Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped

ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी रेडियो सखी रेणुका लेकर कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत. जी हाँ, गीत तो हमारा साथ देंगे ही देंगे, पर गीतों के साथ साथ मैं आपका साथ दूंगी और आप मेरा साथ देंगे. तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इन पंक्तियों से जिसे लिखा है कुमार विश्वास ने. वो कहते हैं, आप तो हूबहू वही हैं, आप तो हूबहू वही हैं जो मेरे सपनों में सैर करता है. सपनों में तो बहुत कुछ हो सकता है. खैर, हम बात करेंगे सपनों की और भी बहुत सारी चीजों की, पर चलिए अभी फिलहाल सुन लेते हैं गीता दत्त जी को. और ये फिल्म है साहिब बीवी और गुलाम.

इरफान सिद्दीकी कहते हैं तुम सुनो या ना सुनो हाथ बढ़ाओ ना बढ़ाओ तुम सुनो या ना सुनो हाथ बढ़ाओ या ना बढ़ाओ डूबते डूबते एक बार पुकारेंगे तुम्हें कभी कभी ऐसा हो जाता है रिश्तों में जब हम ऐसे मुकाम पर आ पहुंचते हैं जहां हमें लगता है कि बस अब ये रिश्ता खत्म पर जरूरी नहीं है कि ऐसा हो कभी कभी बस एक छोटी सी मुस्कान एक छोटी सी माफी सब कुछ ठीक कर देती है और ये कहने के साथ साथ चलिए सुनते हैं अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज में और फिल्म है गुमराह

यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. मैं हूं आपकी रेडियो सखी रेणुका और कार्यक्रम चल रहा है गीत मेरे मनमीत. जिगर मुरादाबादी कहते हैं, हमें मालूम है हमसे सुनो मशहर में क्या होगा, हमें मालूम है हमसे सुनो.

इंसानी फितरत भी कितनी अटपटी मालूम होती है ना. पूरे दिन बस हम यही ख्याल करते रहते हैं कि कब रात होगी, कब हम आराम करेंगे. और जैसे ही रात होती है तो या तो हम बीते दिनों के बारे में सोचते हैं या आने वाले कल के बारे में सोचते हैं. खैर, अब इंसानी फितरत को बदला तो नहीं जा सकता, पर हाँ, हम आपको गाना जरूर सुनाएंगे. और अगला गीत है मेरा नाम जोकर से, और इस गीत को गाया है मुकेश जी ने.

अगला गीत पेश है लता जी की आवाज में और फिल्म है महबूब की मेहंदी. और लता जी हम सबसे एक सवाल पूछ रही हैं और शायद ही इस सवाल का जवाब हम में से किसी के पास होगा. खैर अगर आपको पता हो तो जरूर बताइएगा.

उबैदुल्लाह अलीम कहते हैं, जो आ रही है सदा गौर से सुनो उसको, जो आ रही है सदा गौर से सुनो उसको, कि इस सदा में खुदा बोलता सा लगता है। तो आप भी गौर से सुनिए हमारे आखिरी गीत को, जिसे गाया है आशा ताई और किशोर दाने, और फिल्म है बरसात की एक रात।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ हम समाप्त करते हैं अपना कार्यक्रम और अगली बार मैं आपसे बहुत जल्द ही मिलूंगी. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और शुभ रात्रि, शबा खैर. और हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा IPL खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 2 ओवर शेष रहते मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi last evening. The Myanmar president arrived in Gaya, Bihar on a five-day visit to India on Saturday. Our correspondent reports that Myanmar lies at the confluence of India's Neighbourhood First, Act East and Mahasagar policies. The official visit of President U Min Aung Hlaing to India is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries. Prime Minister Narendra Modi lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratanlal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier, the Union Minister attended a mega event in Agartala marking the 6th anniversary of the PM Swanidhi scheme, where loan checks and QR-coded credit cards were distributed to street vendors to promote digital transactions and economic self-reliance. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has set an expert team of cybersecurity professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of Class 12 answer sheets. In a social media post, the board said it is closely monitoring vulnerabilities in the portal and a thorough review is being carried out to rule out any other exploitable weaknesses. In Himachal Pradesh, the Bharatiya Janata Party, BJP, has won 3 out of 4 municipal corporations in the civic body elections, winning Dharamshala, Solan and Mandi. The Congress Party has won the Palampur Municipal Corporation. The polling took place on the 17th of this month. Defence Minister Rajnath Singh and Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defence Richard Marles will co-chair the second India-Australia Defence Minister's Dialogue in New Delhi today. The Ministry of Defence said that during the dialogue, discussions will focus on strengthening defence and security cooperation, enhancing military interoperability and industry collaboration, including co-development and co-production opportunities. In cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru, RCB, successfully retained the IPL title, defeating Gujarat Titans by 5 wickets in the final at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad tonight. Put into bat first, Gujarat Titans posted 155 for 8 in the stipulated 20 overs with the help of Washington Sundar's unbeaten 50 off 37 balls. For Bengaluru, Rasik Salam Dar picked up 3 wickets while Bhuvaneshwar Kumar and Josh Hazlewood claimed 2 wickets each. In reply, Royal Challengers Bengaluru comfortably chased down the target, scoring 161 for 5 in 18 overs, powered by Virat Kohli's unbeaten 75 off 42 balls. For Gujarat Titans, Rashid Khan scalped 2 wickets. With this victory, Royal Challengers Bengaluru successfully defended their IPL crown, clinching their second successive title. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूं सुरभि आपके साथ. जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां और दिल को छू लेने वाले एहसास, और आइए कुछ पल सुकून के जिसमें हम और आप बांटते हैं अपनापन और सुनते हैं वो गीत वो नगमे जो कहीं ना कहीं हमारे दिल को मन को एक मुस्कुराहट दे जाते हैं. तो कभी किसी के प्यार के दो शब्द पूरे दिन को रोशन कर देते हैं और किसी की एक मुस्कुराहट जिंदगी को पूरी खुशी दे जाती है. तो चलिए बहुत ही प्यारी प्यारी बातों के साथ अपनेपन के साथ छोटी छोटी बातें जो हमारी और आपकी दुनिया को खूबसूरत बना देती हैं आगाज करते हैं निशिगंधा का. और सबसे पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, तीसरी मंजिल फिल्म से.

आपको सुनवाने जा रहे हैं. जब आप इसे सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये गीत कानों में उतर के जैसे कि शाम ने चुपके से तेरी याद का आंचल ओढ़ लिया हो, हवा में कोई पुरानी मिठास खुल गई हो, दिल उन बातों तक लौट आता है जिन्हें कभी शब्दों में कहा ही नहीं गया. तुम पास नहीं होते फिर भी हर धड़कन में तुम्हारा नाम एक अधूरी धुन की तरह बजता रहता है. लगता है शायद यही प्रेम है, किसी के ना होने के बावजूद भी हर पल उसका साथ महसूस होना और ऐसे लगना जैसे कोई गीत कहीं दूर बज रहा हो, उसकी हर पंक्ति बस तुम्हारी ही कहानी कह रही हो. हम पांच फिल्म का ये गीत अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में.

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

निशिगंधा सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ. और प्यार की कहानी में अक्सर दो लोग होते हैं और प्यार शुरू दो लोगों से होता है. और कुछ रिश्ते जो आवाज नहीं करते, केवल धीरे से मन में उतर जाते हैं. और ऐसे में अगर उसकी याद आए और चांदनी रात हो, जहां चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान में ठहरा हो और तारे भी खामोशी में मोहब्बत भरी दास्तां सुनाने निकले हों, ऐसे में उसकी याद आ ही जाती है. चांदनी रात में हवाएं जब धीरे धीरे बहती हैं, तो दिल यही चाहता है कि कोई अपना पास हो और ये रात खूबसूरत हो जाए. तो चलिए सुनते हैं अगला गीत.

कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिसे देखकर दिल खुद ब खुद शायरी करने लगता है, और जब खूबसूरती में मासूमियत खुल जाए तो चांद भी फीका लगने लगता है।

निशिगंधा प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और चलिए अब चलते चलते बॉबी फिल्म का ये गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और शैलेंद्र की आवाज में।

और इस गीत के साथ निशिगंधा का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने में। और अब सुरभि को दीजिए इजाजत, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वाला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वाला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।

0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UPT 4, शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर गायकी के लिए जानी जाती हैं। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार और तुमने पुकारा और हम चले आए शामिल हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा IPL खिताब जीत लिया है। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi last evening. The Myanmar president arrived in Gaya, Bihar on a 5-day visit to India on Saturday. Our correspondent reports that Myanmar lies at the confluence of India's Neighbourhood First, Act East and Mahasagar policies. The official visit of Myanmar president to India is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries. Prime Minister Narendra Modi lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social issues, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashwani, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has said an expert team of cybersecurity professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of Class 12 answer sheets. In a social media post, the board said it is closely monitoring vulnerabilities in the portal and a thorough review is being carried out to rule out any other exploitable weaknesses. Defence Minister Rajnath Singh and Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defence Richard Marles will co-chair the second India-Australia Defence Ministers' Dialogue in New Delhi today. The Ministry of Defence said that during the dialogue, discussions will focus on strengthening defence and security cooperation, enhancing military interoperability and industry collaboration, including co-development and co-production opportunities. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has instructed district administrations, the Relief Commissioner's Office and concerned departments to maintain continuous monitoring and ensure immediate action in the event of any disaster following incidents of storms, rainfall and severe weather in several districts. The Chief Minister has directed that in districts where there has been a loss of human life or livestock due to strong winds, rain, hailstorms or other natural calamities, that affected families should be provided with the prescribed relief assistance without delay. In Jammu and Kashmir, the self-enumeration phase of the house listing and housing census has concluded and the main field exercise is set to begin today. Enumerators and supervisors will conduct door-to-door visits across the Union Territory from today until the 30th of this month to collect detailed information on housing and population. The authorities have appealed to residents to cooperate fully with the field teams to ensure smooth, accurate and timely collection of data. Renowned singer Suman Kalyanpur passed away at her residence in Mumbai. She was 89. The veteran singer was known for her work in Hindi, Marathi and several other Indian languages during the golden era of film music from the 1950s to the 1970s. Maharashtra Governor Vishnu Dev Sharma, Chief Minister Devendra Fadnavis, Deputy Chief Ministers Eknath Shinde and Sunetra Pawar and Union Minister Nitin Gadkari have expressed grief over the passing of Suman Kalyanpur. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूं आपके साथ सुरभि। जीवन में कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें शब्दों से अधिक एहसास बोलते हैं, जहां किसी अपने की एक पुकार ही पर्याप्त होती है और मन बिना किसी संकोच के उसकी तरफ खींचा चला जाता है। ये होता है अपनापन, विश्वास और प्रेम। ये वो बंधन है जिसमें दूरी या कोई परिस्थिति मायने नहीं रखती।

जब दिल सच्चे स्नेह से जुड़ जाता है तब किसी की आवाज शब्दों तक सीमित नहीं रहती बल्कि खूबसूरत एहसास बनकर दिल में बस जाती है। एक ऐसा एहसास जो मन को छूकर अपने पन की ओर ले जाता है और इसी भाव को बहुत ही सुंदरता से व्यक्त करते हुए कुछ गीत हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। प्रोग्राम है गीत सुहाने, मैं हूं सुरभि आपके साथ। जहां प्रेम में समर्पण हो, अपनापन हो और बिना शर्त साथ निभाने की भावना हो, तब क्या ही कहने हैं। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में।

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। और चलिए अब हम और आप मिलकर सुनते हैं रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज में जब जब फूल खिले फिल्म का ये गीत।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। यादें जब दिल के दरवाजे पर दस्तक देती हैं तो हर पल किसी अपने की कमी महसूस होने लगती है और इंतजार की ये घड़ियां लंबी लगती हैं। मन बार बार उसी को याद करता है। प्यार में दूरी चाहे कितनी भी हो, एहसास हमेशा करीब रहते हैं। दिल की तड़प कभी खामोश नहीं होती और वो हर धड़कन में अपना असर छोड़ जाती है। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म है चरस।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूँ सुरभि। कभी कभी जीवन में कोई ऐसा इंसान आ जाता है जिसके साथ सिर्फ साथ नहीं होता बल्कि वो पूरी दुनिया बन जाता है, जिसकी मुस्कान में खुशी और जिसके साथ में सुकून खुद ब खुद मिलता है। और ये रिश्ता तब और खूबसूरत बन जाता है जब ये प्यार का रिश्ता हो जाए, इसमें अपनापन और विश्वास गहराई से जुड़ जाए। कुछ एहसास शब्दों से नहीं दिल की धड़कनों से समझे जाते हैं। इन्हीं मीठे जज्बात को बड़ी खूबसूरती से पिरोता है ये गीत। फिल्म है साथी

सफर को और कुछ दुश्वार करते हैं, सफर को और कुछ दुश्वार करते हैं, अभी मंजिल को तुम इनकार करते हो। ये क्या है कि उम्र भर चारा गरी की किसी को इश्क में बीमार करते, तो एक दिन तुमसे खुशबू आने लगती अगर तुम भी फूलों का कारोबार करते। तमन्ना है ये दिल में तेरी खातिर, किसी दिन हम भी दरिया पार करते, सफर को और कुछ दुश्वार करते, अभी मंजिल को तुम इनकार करते। इसी के साथ गीत सुहाने का सफर यहीं तक, आपसे मुलाकात होगी रात सुरमई में 2:10 पर। अब से कुछ ही देर में सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देवमीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीटों पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर गायकी के लिए जानी जाती हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा IPL खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 2 ओवर शेष रहते मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi last evening. The Myanmar president arrived in Gaya, Bihar, on a five-day visit to India on Saturday. Our correspondent reports that Myanmar lies at the confluence of India's Neighbourhood First, Act East and Mahasagar policies. The official visit of Myanmar president to India is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has said an expert team of cybersecurity professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of Class 12 answer sheets. In a social media post, the board said it is closely monitoring vulnerabilities in the portal and a thorough review is being carried out to rule out any other exploitable weaknesses. In Himachal Pradesh, the Bharatiya Janata Party, BJP, has won 3 out of the 4 municipal corporations in the civic body elections, winning Dharamshala, Solan and Mandi. The Congress Party has won the Palampur Municipal Corporation. The polling took place on 17th of this month. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has instructed district administrations, the Relief Commissioner's Office and concerned departments to maintain continuous monitoring and ensure immediate action in the event of any disaster following incidents of storms, rainfall and severe weather in several districts. The Chief Minister has directed that in districts where there has been a loss of human life or livestock due to strong winds, rain, hailstorms or other natural calamities, the affected families should be provided with the prescribed relief assistance without delay. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will launch the Khet Bachao Abhiyan from Raisen District in Madhya Pradesh today. The month-long campaign will continue till 30th of June. The focus of the campaign will be on balanced and judicious use of fertilizers, timely advice to farmers in the view of weather-related challenges, active participation at panchayat level and delivering the benefits of the schemes directly.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूँ सुरभि आपके साथ. दर्द सीने में छुपाए रखा हमने माहौल बनाए रखा. दश्त में आई बला टलने तक शोर चिड़ियों ने मचाए रखा. वरना तारों को शिकायत होती हमने हर जख्म छुपाए रखा.

है हकीकत है और किस चीज की जरूरत है नींद है ख्वाब है हकीकत है और किस चीज की जरूरत है चिट्ठियों के जवाब लिख डालो आज कुछ तलखियों से फुर्सत है इत्तफाकन मिले थे हम लेकिन इत्तफाकन मिले थे हम लेकिन अब जो बिछड़े तो बस कयामत है ये जो सामान है मेरे घर में मेरी ख्वाहिश नहीं जरूरत है इत्तफाकन मिले थे हम लेकिन अब जो बिछड़े हैं तो बस कयामत है

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग
1: कभी सुनहरी यादें कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं आपके साथ सुरभि। क्या खूब कहा है किसी ने कि अफसाना ए हयात को दोहरा रहा हूं मैं, अफसाना ए हयात को दोहरा रहा हूं मैं, यूं अपनी उम्र रफ्ता को लौटा रहा हूं मैं, एक एक कदम पे दर से वफा दे रहा हूं मैं, ये किसकी जुस्तजू है किधर जा रहा हूं मैं, यूं अपनी उम्र रफ्ता को लौटा रहा हूं मैं।

इश्क में जहाँ से गुजरते हैं गुजरने वाले, इश्क में जहाँ से गुजरते हैं गुजरने वाले, मौत की राह नहीं देखते मरने वाले, आखिरी वक्त भी पूरा न किया वादा ए वस्ल, आप आते ही रहे मर गए मरने वाले। जान देने का कहा मैंने तो हंसकर बोले, जान देने का कहा मैंने तो हंसकर बोले, तुम सलामत रहो हर रोज के मरने वाले, इश्क में जहाँ से गुजरते हैं गुजरने वाले, मौत की राह नहीं देखते मरने वाले।

और इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक. हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में. अब दीजिए सुरभि को इजाजत. आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। वे निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देवमीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पुष्टि की है कि उनकी सेना ने दक्षिणी लबनान में रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ब्यूफोर्ड किले पर कब्जा कर लिया है। इसराइल की सेना ने कहा कि ब्यूफोर्ड रिज और वादी अल सलूकी क्षेत्रों में प्रवेश के बाद इस स्थल पर कब्जा किया।

समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती. शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की, लेकिन आप सबका प्यार भरा स्वागत करती हूं मैं कार्यक्रम हमराही में.

अभी आपने गीत सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। रात की खामोशी में जब दिल किसी अपने को पुकारे तो हर धड़कन बस एक ही नाम गुनगुनाए। मोहब्बत वही है जो बिना कहे भी दिल को समझ जाए।

अभी आपने गीत सुना फिल्म दिल आशिना है सुरेश वाडकर और साधना सरगम की आवाज में। रातों में कुछ यादें यूं दस्तक देती हैं जैसे कोई दूर होकर भी बहुत करीब है, और बस दिल यही कह उठे तेरे बिना ये रात अधूरी सी है।

तस्वीरों में कैद मोहब्बत जब ख्वाबों से बाहर आती है तो हर धड़कन चांदनी बनकर दिल की महफिल सजाती है।

कभी कभी दोस्ती से शुरू होने वाले रिश्ते, कभी कभी दोस्ती से शुरू होने वाले रिश्ते धीरे धीरे प्यार की सबसे हसीन दास्तां बन जाते हैं, जहां हर बार में अपनापन और हर खामोशी में एहसास होता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रोग्राम है हम राही। जब किसी की मुस्कान रात की तन्हाई में भी सुकून दे तो समझ लेना दिल को प्यार हो चुका है और फिर हर सपना उसी के नाम हो जाता है।

कुछ रिश्ते चांद और चांदनी जैसे होते हैं, दूर होकर भी हमेशा साथ रहने वाले, जहां प्यार सिर्फ एहसास नहीं पूरी जिंदगी बन जाता है। और छोड़ के जा रही हूँ आपको कार्यक्रम के आखिरी गीत के साथ, जल्द मिलूंगी 4:10 पर लेकर कार्यक्रम अरुण।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे लोक भवन में होगा। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीटों पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा IPL खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 155 रन का लक्ष्य दिया 156 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 2 ओवर शेष रहते मैच जीत लिया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, माही, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi last evening. The Myanmar president arrived in Gaya, Bihar, on a five-day visit to India on Saturday. Our correspondent reports that Myanmar lies at the confluence of India's Neighbourhood First, Act East and Mahasagar policies. The official visit of Myanmar president to India is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries. Defence Minister Rajnath Singh and Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defence Richard Marles will co-chair the second India-Australia Defence Ministers' Dialogue in New Delhi today. The Ministry of Defence said that during the dialogue, discussions will focus on strengthening defence and security cooperation, enhancing military interoperability and industry collaboration, including co-development and co-production opportunities. In Himachal Pradesh, the Bharatiya Janata Party, BJP, has won 3 out of the 4 municipal corporations in the civic body elections, winning Dharamshala, Solan and Mandi. The Congress Party has won the Palampur Municipal Corporation. The polling took place on the 17th of this month. In Maharashtra, the ruling Mahayuti Alliance has finalized its seat-sharing formula for the upcoming Legislative Council elections to 17 seats. Under the agreement, the BJP will contest 11 seats, Shiv Sena 4 seats and the Nationalist Congress Party NCP 2 seats. The opposition Mahavikas Aghadi MVA had earlier announced its allocation for 15 of the 17 seats, with Congress contesting 8 seats, Shiv Sena UBT 4 seats and the Sharad Pawar-led NCP 3 seats. Discussion on the remaining Nasik and Nanded seats are still underway. Today is the last day for filing nomination papers for the elections. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has instructed district administrations, the Relief Commissioner's Office and concerned departments to maintain continuous monitoring and ensure immediate action in the event of any disaster following incidents of storms, rainfall and severe weather in several districts. The Chief Minister has directed that in districts where there has been a loss of human life or livestock due to strong winds, rain, hailstorms or other natural calamities, the affected families should be provided with the prescribed relief assistance without delay. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will launch the Khet Bachao Abhiyan from Raisen district in Madhya Pradesh today. The month-long campaign will continue till 30th of June. The focus of the campaign will be on balanced and judicious use of fertilizers, timely advice to farmers in the view of weather-related challenges, active participation at panchayat level, and delivering the benefits of the schemes directly to the villages. Renowned singer Suman Kalyanpur passed away at her residence in Mumbai. She was 89. The veteran singer was known for her work in Hindi, Marathi and several other Indian languages during the golden era of film music from the 1950s to the 1970s. Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma, Chief Minister Devendra Fadnavis, Deputy Chief Ministers Eknath Shinde and Sunitra Pawar and Union Minister Nitin Gadkari have expressed grief over the passing of Suman Kalyanpur. In Jammu and Kashmir, the self-enumeration phase of the house listing and housing census has concluded and the main field exercise is set to begin today. Enumerators and supervisors will conduct door-to-door visits across the Union Territory from today until the 30th of this

एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है कार्यक्रम अरुणिमा का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस गीत के साथ। गीत है फिल्म संजोग से लता मंगेशकर की आवाज में और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म आपकी कसम से किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार आरडी बर्मन।

अभी आपने गीत सुना फिल्म राम तेरी गंगा मैली से लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार रविंद्र जैन, गीतकार रविंद्र जैन। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म परिंदा से सुरेश वाडकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज में, संगीतकार आरडी बर्मन।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म अनुरोध से किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत पेरीलाल।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत. फिल्म तीसरी मंजिल से मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीतकार आर डी बर्मन.

छोड़े जा रही हूँ अब मैं आपको कार्यक्रम के आखिरी गीत के साथ. गीत है फिल्म आन मिलो सजना से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में. 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी. गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार. तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति. नमस्कार.

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑनलाइन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी बातचीत के दौरान सुरक्षा संपर्क व्यवस्था और द्विपक्षीय सहयोग सहित आपसी संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श होगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोवाल ने भी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की राष्ट्रपति के रूप में श्री लाइन की यह पहली यात्रा है म्यांमार के राष्ट्रपति मुंबई भी जाएंगे जहां वे उद्योग तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वला शेरिल के बारे में बात की ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है
1: केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह विशाल टीके तेजस्वी शंकर देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 11 बजे लोक भवन में आयोजित होगा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई को 5 कैबिनेट मंत्रियों की टीम के साथ कार्यभार संभाला था मंत्रिमंडल विस्तार के बाद राज्य सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी ये संख्या 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए निर्धारित संवैधानिक सीमा के भीतर होगी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा मिजोरम सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे ये अभियान 30 जून तक चलेगा अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग बढ़ाना मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना तथा पंचायत स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित करना है इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लबनान में रणनीतिक महत्व वाले ब्यूफोर्ड किले पर कब्जा कर लिया है आईपीएल के फाइनल मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीत लिया गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया जवाब में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 2 ओवर शेष रहते मैच जीत लिया इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ
2: नमस्कार This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi last evening. The Myanmar president arrived in Gaya, Bihar, on a five-day visit to India on Saturday. The official visit of Myanmar president to India is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari will expand his cabinet today. 35 new ministers will be inducted into the Council of Ministers. The swearing-in ceremony will take place at Lok Bhavan at 11 a.m. The fresh inductions will significantly scale up the Adhikari administration, which took charge on 9th of May with a core team of five cabinet ministers. With this expansion, the total strength of the state cabinet will rise to 41, strictly keeping within the constitutionally mandated 15% limit for the 294-member West Bengal Assembly. The notification for biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states will be issued today. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1 seat each in Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram will go to polls. Former Prime Minister and JDS leader H.D. Devegowda, Union Ministers and BJP leaders George Kurian and Ravneet Singh, Leader of Opposition in Rajya Sabha and Congress President Mallikarjun Kharge are among the members who are completing their terms this month. Notification for the Rajya Sabha by-poll for one seat each in Maharashtra, Tamil Nadu and Odisha will also be issued today. The seats are vacated by Maharashtra Deputy Chief Minister Sunetra Ajit Pawar and AIADMK MP from Tamil Nadu C.V. Shanmugam, who were recently elected to the State Assembly. BJD MP from Odisha Debashish Samantre had also resigned. Nominations can be filed from today till 8th of June. The polling will be held on 18th of this month. The counting of votes will take place on the same day. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will launch the Khet Bachao Abhiyan from Raisen District in Madhya Pradesh today. The month-long campaign will continue till 30th of June. The focus of the campaign will be on balanced and judicious use of fertilizers, timely advice to farmers in the view of weather-related challenges, active participation at panchayat level and delivering the benefits of the schemes directly to the villages. Defence Minister Rajnath Singh and Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defence Richard Marles will co-chair the second India-Australia Defence Ministers Dialogue in New Delhi today. The Ministry of Defence said that during the dialogue, discussions will focus on strengthening defence and security cooperation, enhancing military interoperability and industry collaboration, including co-development and co-production opportunities. In Maharashtra, the ruling Mahayuti Alliance has finalized its seat-sharing formula for the upcoming Legislative Council elections to 17 seats. Under the agreement, the BJP will contest 11 seats, Shiv Sena 4 seats and the Nationalist Congress Party NCP 2 seats. The opposition Mahavikas Aghadi MVA had earlier announced its allocation for 15 of the 17 seats, the Congress contesting 8 seats, Shiv Sena UBT 4 seats and the Sharad Pawar-led NCP 3 seats. Discussion on the remaining Nasik and Nandher seats are still underway. Today is the last day for filing nomination papers for the elections. And in cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru successfully retained the IPL title, defeating Gujarat Titans by 5 wickets in the final at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. Put into bat first, Gujarat Titans posted 155 for 8 in the stipulated 20 overs. In reply, Royal Challengers Bengaluru comfortably chased down the target, scoring 161 for 5 in 18 overs. With this victory, Royal Challengers Bengaluru successfully defended their IPL crown, clinching their second successive title. And that is the end of this news bulletin.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त भारती और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम भोर सुहानी की इस भजन की।

गीत हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की हर सुबह अपने साथ मुस्कान, सपने और नई प्रेरणा लेकर आती है। बस दिल के तारों को छेड़िए और खुशियों की धुन में खो जाइए।